ये जो लोग आपका नाम ले रहे हैं, ये तोड़ेंगे ये तोड़ेंगे ये तोड़ेंगे, उनको लगता है एक बार ये कर चुके हैं, अब मैं कहूंगा तोड़ के दिखाइए, आपको नहीं तोड़ेंगे ना, बाप का नाम समझा। हाँ, क्या खेल लगा रखा डेमोक्रेसी।